0: These children were given a high-quality facility, attention, and an education. They have been offered a future.
1: उठ जाते हैं, नींद चली जाती है ना? पक्षी उठ जाते हैं, फूल खुल जाते हैं, सभी आदमी उठ जाते हैं कि भाई नींद उड़ो, उठो उठो, सूर्य उदय हो गया है, आज सूरज उग गया, उठो उठो, कहो कि नहीं कहो? तो ये रंग जो है वो जागृति का रंग है। काय का रंग है?
2: जागृति का।
1: हाँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमें अंधकार की ओर से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए। तो ये रंग जो है प्रकाश की ओर ले जाता है।

0: when we are doing Karma Yoga, that time we shall observe our psychic condition, the psychic state of our being in that situation. Now, what do you think? The Karma Yoga is such a technique where you can analyze your entire life and future life.
1: The source of strength to help others and ourselves lies in sadhana, in the practice of yoga. Only one who understands movement can control movement. Every movement is a sort of hunger. We only move when we have desires or fears. Only one who consciously masters the movements of the body, who masters the movements of breathing, who masters the movement of the mind, only he or she can reach the ultimate aim of every movement. That aim is Purna, completeness, our own divine completeness, which is realized only in the deepest stillness. This center offers a number of possibilities, not only for humanitarian work, but also for working on ourselves. But in order for the center itself to be completed, it needs much support. Everyone, every idea, and every contribution are welcomed. Here, nothing is in vain. The following days took us to Jodhpur, yet another of India's pearls. Here at the hill, over the city, in the ashram of Ajneshwari, yoga and daily life has made it possible for these people to overcome their weaknesses, their stiffness, and their restlessness. Simple but beneficial yoga exercises have had an excellent effect. Touched by the strength of yoga, these people could hardly wait for the evening to see and hear Swamiji.
0: कहाँ तितिक्षा की, कहाँ सहन करने की शक्ति है? अरे थे कट ध्यान करियो, थारा ध्यान तो पगों में है, तो कि हमारा पग दुखे। हमें तो उस निराकार के अंदर जाना है, चिदाकाश के अंदर यात्रा करनी है, हमें तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है। कहाँ? हमारी स्वयं चिदाकाश के अंदर। और हमारा चिदाकाश कितना बड़ा है? हमारा चिदाकाश इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा, जितना ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है।
1: To the delight of many, Swamiji conducted the morning sadhana. This morning the subject is meditation.
0: The liberation doesn't come through some postures of the body. The liberation will come through the knowledge and Guru Kripa.
2: Everything what's happening, I'm beyond this. Be the witness of your body. Be the observer of your thoughts. And feel that I am relaxed. I'm the bliss. I am the bliss.
1: Every evening, spiritual thirst was quenched by the words of the Guru.
0: O Swayambhu Shiv, वचैतन्य शिव, जिनके द्वारा सूर्य चंद्र तारे ग्रह दृश्य अदृश्यमान शक्तियां गुण तत्व आदि की उत्पत्ति हुई, और वही चैतन्य शिव स्वयंभू। इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर विद्यमान है।
1: A new morning, a new yoga technique. Today, on schedule, it is Tratak, an excellent method for improving and balancing our emotional and mental functions.
2: Try to gaze on the flame carefully. Try to become one with the flame.
1: Swamiji has found the time to visit a school for children with hearing and speaking problems, deaf and mute children. The arrival of a yogi always offers something that can help.
0: Very good. बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की तीन चार और अलग अलग क्रियाएं हैं और साथ ही साथ वो वेजिटेटिव नर्व सिस्टम्स जो है, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक एंड सेंट्रल नर्व, तो उसमें कुंभक के द्वारा प्राणायाम, विशेष कुंभक होती है। उस कुंभक से क्या होता है कि कुछ नाड़ियों का यहाँ खुल जाना हो जाता है, सेंट्रल जो केंद्र है वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है।
1: This is how our days in Jodhpur passed, between sadhana, humanitarian work, and satsang.
0: और उस हृदय आकाश के अंदर, कमल के अंदर में एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा के वो अंदर वो जो क्लोज, इट इज ए क्लोज ग्रंथि है या मांसपेशी है, विधीन उसके अंदर में एक स्पेस जो है गुफा, और उस स्पेस के अंदर का जो वो गुफा के अंदर की जगह जो है, वो स्पेस है, उसमें जो समाया हुआ है वह आत्मा है।
1: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to Swamiji on the spot.
3: राम भजन रोचो घड़ियो मन सतगुरु सही समझा मन मारा ज्ञानी गुरु एड़ा मिलिया मन मारा सत्य

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. The photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: स्वामी जी महादानंद जी महाराज साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं बताया गया पर उनका संदेश हमारे बीच में है आपके बीच में है लंबे समय तक कैसे उन्होंने वो काम किए जिससे कि आत्मिक सुख मिले आत्मा को शांति मिले सद्भाव का वातावरण कायम हो एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को देश को दुनिया को संदेश देते गए ये सौभाग्य है पाली जिले का देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का जहाँ वो पैदा हुए उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है
2: टुडे विद अस Large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं तन से वहाँ हैं गुरुजी हमेशा यही कहते हैं नशा पत्ता छोड़ो जाति पाति का भेदभाव छोड़ो सर्वधर्म का सम्मान करो जिससे कि विश्व शांति बनी रहे प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो बोल श्री दीप नारायण भगवान की धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless and His glory is endless. He is beyond our imagination. Beyond the borders and beyond everything.

0: अम्बल श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सत गुरुदेव की जय,
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय, श्री अलकपुरीश महादेवा की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव, माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म, मात पिता गुरुदेव की, ओम शांति शांति शांति।

0: भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: स्वामी मानवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

0: भगवाने की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की सब ऋषि मुनि महात्माओं की माता पिता गुरुदेव की
1: हरिओम।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

निज प्राणा सात्विक एनर्जीज फ्लोइंग इन द बॉडी एंड ऑल द टॉक्सिन इज एक्सहेल्ड.

0: सुरू कीजिए आरती।
1: ओम रीम रत् चालू करूं?
0: हाँ आरती।
1: ओम रीम रत्नेश्वरी नमः ज्वालामलिनिनमः सर्वोपचारार्थ गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। ओम जय गुरु बड़ी वाली बोलना विक्रम भैया।

0: हो गुरुदेव,
1: ओ गुरुदेव
0: महाप्रभु जी,
1: महाप्रभु जी,
0: आप ही ब्रह्मा, यू आर द ब्रह्मा,
1: सी ब्रह्मा,
0: दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर,
1: ब्रह्मा který je stvořitel,
0: ब्रह्मा विष्णु, नो द गॉड विष्णु मेनी मेनी टाइम्स मेनी मेनी ऑल्सो लाइक वाट कॉल बी द कृष्णा,
1: si Bůh Višnu a také ho známe pod jménem Krishna.
0: Aap hi Brahma, aap hi Vishnu, aap ho Kailas Kevasi, and O Gurudev, you are also residing

0: You are that of the Gyata, the knowledge knower.
1: I see znalec.
0: You are the form of the knowledge, Gyata.
1: Si podobou poznání.
0: Namo Om Namo Prabhu Deep Pranama Brahmananda Urvasi. And about Brahmananji, it is Om Namo Prabhu Deep Pranam. So Om Mahaprabhuji, Prabhuji said, Pranam, salutation. Brahmananda Urvasi, Brahmananda, Brahmananda, Brahmananda. There you are residing, O my Devpuriji, Gurudev.
1: Takže přebýváš tam, můj Devpuriji, můj Gurudev.
0: Namo, Om Namo, Prabhu Deepaya Vinasi. Apo Brahma, Apo hi Vishnu. Apo ho Kailas Kevasi. Apo ho Narad, Apo ho Sarad. Apo ses Sukrasi. Apo ho Dhyani, Apo ho Gyani, Apo ho Yog Prakasi. आप हो दे सब देवी आप हो सूर्य प्रकाश आप हो ब्रह्म विनिर्वाणी आप हो चहु आप के वासी चहु इन ऑल डायरेक्शंस यू आर देयर
1: सी ve všech směrech
0: आप हो वेदों के ज्ञाता आप हो भक्त उर्वासी आप हो सतनाम के दाता आप हो निज स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभु दीप प्रणामा ब्रह्मानंद उर्वासी सत्य सनातन धर्म की देवादि देव अलकपुरी जी महादेव की देवादि देव देवेश्वर महादेव की परम आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय सत्य सनातन धर्म स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम
1: हरि ओम गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय

सो हम देवपुरी श्री महादेव की जय, अलकपुरी जी महादेव की जय, दीप नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सो ऑल डियर वंस हु इज विथ द वेबकास्ट, सम है मॉर्निंग, सम है मिडनाइट, मिड डे और इवनिंग, ग्लो

हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत। एंड दिस लेडी हिज सिस्टर बिगिन टू बर्न, शी बर्न इन द एस एंड ही

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। दीप नारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

जय श्री श्री देव पुरी महादेव हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की। ब्लेस्ड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर

0: हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य वो जाता है, मरने जाता है, तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य श्रीधनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delhi Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delhi Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delhi Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Delhi Life.
1: Yoga in Delhi Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji. DG, Pushpa ji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Delhi Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti Vishwa Shanti Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji aaiye aap, and please sing one bhajan दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर
1: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंग पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंग पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरन जी महाराज ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्यंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी

पूज्य आनंदानंद जी महाराज हिज महासमाधि डे ब्रह्मलीन डे इज ऑल्सो 21st of June. सो हाउ सो वी कैन सेलिब्रेट डे ऑफ योगा एंड स्वामी जीज बरसी सेलिब्रेशन. सो माय डियर इंडिया स्टिल इंडियन भक्तास इंडियन पीपुल एवरी हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट ऑल दे आर हेल्पिंग द नेपाल पीपुल एंड मैनी मैनी पीपुल फ्रॉम मैनी मैनी कंट्रीज दे आर कमिंग. वी आर थैंकफुल फॉर देम एंड वी प्रे टू अलमाइटी दैट इट शुड नॉट हैपन सच थिंग एनीवेयर टू एनी वन. So thank you for coming, and if you would like to announce or give, we met within 3 days, so we can organize some trucks to bring the food, so not from the Jaipur, because half expenditure to ye truck petrol mein khatam ho jayega. So we will try to buy the all this material. यू विल सेंड द ट्रक बट ऐसा है कि यहां से नेपाल की बॉर्डर तक आने जाने का कितना हजारों का डीजल बलेगा वाट एवर. ओके सो वी शेल सेंड फ्रॉम हियर. हरिचंडी बताएंगे हमारे रिस्पेक्टेड वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सो द ग्रीन लाइट एंड वी कैन सेंड सम track and some food. So thank you very much. Today whatever you will give I will appreciate in name of the Nepalese. Thank you. God bless you. Om remain will Om. Dharma will remain the Dharma. And if you like to practice, okay. If you don't like to practice, it's okay. But if you practice yoga, it has nothing to do with my religion or your religion. It has to do with your good health, your peace of mind, anti-stress, and for the spiritual development, it is the science. Therefore, Om should remain. You all should write, please, a letter immediately, as soon as possible. Bol Sadguru Dev ki, Deep Narayan Bhagwan ki, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om. सभी बोले

श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय।